0: तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हर दिल बहलाना मेरा काम है। आज मैं कहीं जा रहा था, अचानक एक हसीना ने हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगी। थोड़ी दूर जाकर जब उतरी तो मुझे ऐसा लगा, हाय ऐसा लगा कि कुछ गुम हो गया है।
1: क्या गुम हो गया?
2: दिल, दिल।

0: क्या तनु की चेदा का?
1: हाँ, क्या बोला
0: जी? मेरा मतलब ये है कि की हुक्म आका।

जाना मुझे भूल जाना, समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना मुझे भूल

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: यहां का काम तो शायद खत्म हो गया है।
1: अच्छा ही हुआ जो काम करते रहे, मैं संभल गई। अब आपसे माफी मांग लूं?
0: मुझसे?
1: हाँ, आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ।
0: तो क्या हुआ? तुम्हारे भले बुरे के जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारी खातिर?
1: समझी, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं?
0: नहीं, मैं तो जिंदगी से दूर भाग रहा था, एक ऐसे रास्ते पर से जहां आराम था न किसी पेड़ का छाया, धूल ही धूल थी अपनी नाकामियों की, जिसमें मैं अपने आप को खो बैठा था। इतने में तुमने मुझे आवाज दी, मैं रुक गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जिंदा हूं।
1: दीपक,
0: क्यों आवाज दी तुमने मुझे? क्यों याद दिलाई ये सब कुछ?